संयम तीर्थ उनो युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आ यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउंगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजा ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए। सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तो अपनी राह तो चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन अखरां।

ना पूछो जाती। ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना, जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जाणो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आपदी चोली पावां।

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

काल खाए कि छत होंदे, काल खाए कि छत होंदे, नानक रा पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, मान होंदे कोई नी माणा, हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, तां होंदे कोई नी ताणा, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏ ਆਣਾ ਹੱਥ ਸਿਰ।

कीमत अदा नहीं हो सकती जिस वस्तु दी ओ मिल जावे ता उसनू प्राप्त कहिंदे हन। आख्या तू 84 लख जूना विचों त्रिगड़ जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है ते एहो ही तेरी बारी है एही वक्त है तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे जन्म मरण तो रहत हो जावे ते जे ना कीता तां फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू इसलिए आप बख्शिश करदे हन।

जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता, इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिलिया, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदियां ने गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समा सिमरन विच जप तप विच बतीत होंदा है, समा ओ सफल है

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह

धरती दी पालना करने वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजे जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शायमयाना है तंबू है केड़ा ए बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है पर उस गोपाल राय का तंबू केड़ा है ये सारा

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पारिस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

लक्ष्मी कुवारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुवारी है। ओदे हुक्म तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दिया।

हाथ जोड़े भगत नामदेव दे चरणा ते मत्था टेकिया आखिया ऐ नामदेव बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए मैनू अपनी गां समझ के माफ कर दे। तो नामदेव जी ने बादशाह नूं उस वक्त फिर ए उपदेश दिता।

बादशाह ने खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तो रुपए बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने, दरबारियां ने अपनी कीमती सेजा नामदेव दे अगे धरी ते बेनती कीती, बादशाह सलामत दी ए इच्छा है ए कीमती सेजा तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती सेजा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए, बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा दरबारियां दे नाल। फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक बारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत वाणी बोले मिठी हो जाती। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नूं

ब्याल हो जाए देहुरा फिरे देवरा कंद ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा है नामदेव नु जदों पंडता ने नीवी जायदाद समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने अगर वो दयाल हो जाए

अवर नहीं जाए, नाम देओ गुरु की शरण आए। ए नाम देव ऐसे गुरु की शरण विच रहिंदा है, जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर

बादशाह ने पूछया, भगत जी एक सहज तो मेरी है, ए बाकी सहजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसवां दी किरत विचों, ताओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदा है। ए सारियां सहजा तैनू मिलनिया सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजा हुण तैनू नहीं मिलनी। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं होंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने, उस गोपाल दी असी पूजा करदे हां, जिड़ा कदी मरदा नहीं, किसे कोलों डरदा नहीं।

उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान कीता जांचे कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व व्यापक अंतर अरे प्रणवे नाम दियो तांची आन सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना ब्यांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं सब कुछ होद है ओ बनान वाला है प्रणवे नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लेंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड।

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के भली पात कहूं असब होए के बह

के जतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ दीन लोक गाई है कहूं के तनैया है न मैया जाके भैया कहू छोड़ी हूं के छै छोड़ का से प्रीत लाई है साधना सताइया तूल तानी के पजैया तोर ताम के पढ़ैया ध्यान छद तसलाई है आयु के बढ़ैया एक नाम के जपैया और काम के करैया।

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोची, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उनका फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है उहदे वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझने आ। हालांकि साहिबां ने पावन